नमस्कार, 4EB के ग्लोबल प्रोग्राम के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। ठंड बढ़ती जा रही है और आए दिन लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे मौसम में अपना और परिवारजनों का भरपूर ख्याल रखिए। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस राम भक्ति गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और जया किशोरी ने।